0: क्लास तुम कुफाफ ही
1: निफी तुम्हारा फिर ने इंसान है मिला फिउमानन मिला आदि मिला फिर इंसान अरसाइम मत तुम्हारे यहाँ तू कौन मामूला फुलान तनुरा मैं अपनी फनान तनुरा इतना फिर ने ना रपिच रफकपिच आओ के ना रोटी फोफी तक आओ के ना रोट चला लोफ नुल फमिला मिउमने ना रे मिला मिउफने ना रे आर्डिना डिना मिला साये ना रे उधर फसाई ना तो ना रोटे वा मनु बंती फिर ने इंती साये ना रे मंडराय ड्राइक्ट मिचरुए ना रे फनेस ना ड्राइक्ट आज हमें सारा सारा नुल नाम दे सका फिफा फान नाम दे सका फियाविन नाम रे सका अंतुक पॉलिटिक मार्शल म्याफा फाये ना रे वन तू पंड्रापीच उन मध्य कस्कियार
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: बस तुमको वाफी
1: अच्छा नहीं तो टांस होती उठनी चुनने दापा नाम दिया स्टेनो नो अच्छी फनूर कलो बम फने देता नो फुस नहीं तू तू नहीं की फुस ऐसा यार चीज़ को से ये कोरोना चिन्ह बोला मिस
2: Sotra tumbukula, sotra tumbukuvava.